0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पद सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा ये साखी नूं सुने कलयुगों दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगै भगती जगै धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओहदे भज जाणगे, भगती ओहदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी। जिहड़े गुरसिख होणगे सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई अमर छको, दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारियां चीजां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच। अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों, इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल् छड़ दो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों, आ किमें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने एक ही बचन मान लो उस भला है। महाराज वो कि बचन

वाले केसाधारी सिख ने तिने सिखियां पूर्ण कीतियां ने। बेहंड हुंदा बिना हंडन तो भाव पूर्ण। इसलिए सिंह केसाधारी होवे ते तिने छाया का त्याग करे तो बिहंड तिना गल्लां का त्याग करे। ये तीन चीजा आपां पहलां भी देखियां कि मड़ियां मठां नूं ना मन्ने, भेख ना धारण करे, अते इसे प्रकार जो है ना आम तौर ते लोग दान जिहड़ा है खाण दे विच विश्वास करदे ने, एवें इधर उधर रोटी खा लैनी, जै तैं का जिवें प्रसाद, मेरा सिख नहीं आज जुगाद। महाराज कहिंदे इस तरह जिन्हें अमृत छक लिया वो सहज धारी विचों निकल के चरण पहुलिए तो भी उत्ते हो के अमृत धारी सिख बनिया है। पर हां जिहड़े सानू मनदे ने सारे गुरसिख हौली हौली, सहजधारी का मतलब यह नहीं हुंदा कि सारी जिंदगी उह सहजधारी बनिया रहे, फिर उहदा की फायदा, तरक्की करे। सहजधारी तो अगे अमृतधारी भी बने, ना कि सहजधारी ही बनिया रहे। महाराज कहिंदे फिर उहदा कल्याण किवें होवेगा। इस करके भाई हौली हौली

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे दे नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, ये पहाड़िया नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसों बरसै ऐसी सुनो सिख मम बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मनदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब नूं नहीं मंनदा।
1: सरवर गुग्गा आदि जे पीर, दिज दिजनी सेवा होए पीर।
0: दिज ते दिजनी, दिज हुंदा ब्राह्मण, दिजनी ब्राह्मणी, भीरू हुंदा कमजोर दिला होके, जे ओ गुग्गा पीर मंनदा, सुल्तानीए पीर नूं मंनदा, होर किसे नूं मंनदा, पहलां तां उहदे लई ब्राह्मण होके इही माड़ी गल है, तुरकां नूं मन्नी जांदा एवें, ते साडे सिख जा के ओह ब्राह्मण नूं मन्नी जांदे ने अगे। महाराज कहिंदे इह तां माड़ी गल है, जिहड़े लोक बिल्कुल अपने धर्म तों भ्रिष्ट हो गए ने उहनां नूं जा के आपां ने कदे वी नहीं मनना, ना उहनां नूं एवें झुकी जाणा, पैरीं हथ लाई जाणा, ओह तां गाहां अपने धर्म तों भ्रिष्ट हो के गुग्गे दीआं कबरां ते पूजी जांदा, मत्थे टेकी जांदा, ते गाहां साडे जे उहनूं जा के मत्था टेकणगे ओ भी सिखी तो खारज हन।
1: जिसकी संगत सिख न बैसे, दीनो दान का फल है से।
0: महाराज कहने मैं तो कहना ओदी संगत विच बैठो ही ना, एह जे बंदे दी ना मत्थे लगो दे, तुसी कहने हो भी असी दान देना, महाराज कहने मैं तो कहना ओदे नेड़े नहीं बहना, तुसी कहने दान देना, एह जे नूं की दान देना, एह तो रोटी खवाउणी भी हुण माड़ी होई पई है, क्यों, क्योंकि ओ तां किते होर दा बन गया, सारा नशा पता वह करी जाते ने, बिचे पांजे चबी जाते ने, बिचे बीड़िया सिगटा पी जाते ने, बिचे होर चीजा भी खा लिया, बिचे इधर भी चलिया गया, उधर भी चलिया गया, जिथों पैसा मिलता उन्होंने अपना धर्म पैसा बना लिया। इस करके भाई जेड़े बंदे ऐसे गंदे ने उन्हां बंदयां दी ना संगत करो, ना उन्होंने कोई दान दो, ना कोई चीज दो।
1: गुर गुर सिख की निंदा करे, जिस दिज को दे सो दुख भरे।
0: हुण जिहड़ा गुरु साहब जी की निंदा करदा है, गुरसिखां की निंदा करदा है, वो ब्राह्मण जिहड़ा वह तो दुखी होवेगा, क्यों करदा निंदा, फिर तुसीं उहनां वरतदे हो। महाराज कहिंदे ऐसियां नाल नहीं वरतना, सिर्फ उहनां नाल ही वरतना गुरसिखां दे नाल जो गुरु घर दे प्रेमी हन।
1: जेको मेरा होए न सिख, किस ब्राह्मण को दे न भिख।
0: हुण जिहड़ा मेरा सिख ही नहीं हैगा, ते बिना ही एवें सिखी तो आके मंगण खड़ जे, महाराज कहिंदे उहनूं बिल्कुल ना दिओ कुछ भी। ऐसा रीति चली सी, हुण भी है किते किते ऐसियां रीतियां, हुण तां हौली हौली उदों एक नवी चीज प्रारंभ होण करके ना ये उदों दा अज नालों थोड़ा जिहा फर्क इस तरह है कि खंडे बाटे दा अमृत जदों छकाउणा शुरू कीता, पहला भी बेनती कीती, कईयां ने अपनी मजबूरी भी जाहर कीती सी, महाराज हले साडे खानदान वाले नहीं मंदे।
2: कोई सिंह बन गया उहनूं तां जे हुण असीं ग्रंथी सिंह आ जां पाठी ने, होर पाठ भी कई ब्राह्मण सिंह भी हुंदे ने, उदों ऐसा नवां नवां कम चलिया तां समझा रहे ने। महाराज कहिंदे भाई उहनां नूं तां चलो कोई नहीं, जे गुरसिख बन गया दान देना उहनां दी आपां ने सांभ संभाल करनी, पर इह जिहड़े लोक ने होर गलत ढंगां दे नाल सिर्फ पैसे वास्ते भेख नूं धारण करदे ने ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ।
1: ਦਿਜ ਬਿਨ ਕੇਸ ਜੋ ਪਾਹੁਲ ਤਾਰੇ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੇ।
2: ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੱਗੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਰ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਰਹਿਤਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਓ।
1: ਸੁੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਤ ਕੋ ਰੱਖਣ, ਧਾਰੈ ਧਰਮ ਸ਼ਰੁਤ ਕਰੈ ਜੋ ਭਾਖਣ।
2: ਸੁੱਚ ਰੱਖੇ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਕਰਨਾ।
1: ਹੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਨ ਬੇਖ ਧਰ ਦਾਨ ਲੁੱਟ ਬੇਤ।
2: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਲੋਕ ਲਿਬਾਸ

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कि नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करेंगे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार दर्शनों करिए पवित्र गज के आख

0: उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल कि जिहड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कवीशर ने नाना प्रकार के जिहड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारिआं नूं बुला के लियाओ इन्हां कोलों अज कुछ प्रश्न पुछणे ने
1: सभिआं को हकार लियाओ जय जय दीता सिदाओ
0: इन्हां सारिआं नूं लै के आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हां दे टिकाणे घर बार श्री आनंदपुर साहब दे विच हरेक नूं बुला के लियाओ अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारिआं नूं बुला लिआंदा
1: तिनको देह नाम बताए
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनूं पता है उन्ने क मैं दस रिहा हां
1: केशो दास पुत्र कुवरेश
0: सो ये केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है
1: द्रोण पर्व जिलकीन अशेष
0: सो जिन्हें महाभारत दे विच्चों द्रोण पर्व सारा जिहड़ा पर्व है वो भाषा दे विच टीका कीता है
1: गुणिया सुखिया बल्लभ आयो
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लभ ये भी तिन्ने आए हैं
1: ध्यान सिंह गुर दर्शन पायो
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्हां ने भी गुरां दे दर्शन पाए
1: इत्यादक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर
0: इत्यादक कुछ होर भी आए ने मुखियां दे नाम लै लए ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया
1: सादर बैठे सभा मझारे
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन
1: साप्रत श्री प्रभ गिरा उचारे
0: जिन्ने जने आके बैठे सन सियाणे विद्वान पंडित गुणी जन उन्हां प्रति गुरां ने इस तरह वचन कीता

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं कलयुग विच। बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे, वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा, नाउं लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: वेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: वेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच, ओह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर, वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुतले।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਇਉਂ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਪੂੜੇ ਖੀਰਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
0: ਜੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੁਰਸ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਵੇਖ।
1: ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਟਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ, ਵੇਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ

0: भाई अमृत राय नूं महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सत्कार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा,
0: रोज इनूं हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनूं मिलनी है, जां हर रोज इनूं 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: सुन सुन कर सुजस बडेरा,
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन के ने, छंद बंद सुंदर गत लीने।
0: ए करण परब इहदी पाखा जिहड़ी है, भाव देश भाषा विच बोली विच, ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा, महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: चलन समय संग रहण में दान देन ओलेन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कामां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंत्र करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा कम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दियां, एक वचन नाल मार दियां, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्ने भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतु करते हैं चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुम खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि यदि जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इस प्रकार आइयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो ए भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

याद रखिए करो आपका स्मरण गर्भ ना बस है आपका स्मरण धूप जामा ये उपरी घर चो भजा चाहते हो बाबिया को तुरे फिरते धागा कविता वाले को कदी कबर से तुरे फिरता जीव कदी कि तुरे फिरता सिर्फ चौदह मेरे घरों कड़े कलेश नट गया महाराज मेरा काम चल पवे तो महाराज पातशाह की कह रहे सिमरो सिमर सिमर सतपावत अगे पढ़ो की लिखे बिना इतो भी मिट जू फिर कबर से की लग जाते झूठे पीने गुरु तो नाले धागे कविता वाले को जाके गुरु तो झूठे पीने ते गुरु तो झूठे ना पाओ एक बचन कह के समाप्ति करूंगा धन गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज की कहते शर्म वेख लो कि डर मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आन के क्या रेजी नलज लाज तो हे नाही हे नलज बेशर्म जीव ते शर्म नहीं आती आखिर की गलती होगी जेदा गुरु का सिख हो गया कबर के मथे टेकन दे हर ताज तत् हर ताज ताज मैंने छड़ के इन छड़ के तत् कानून ते जाई होर ना वल तुरिया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहते नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा कहना नहीं तू जे सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हें पुरकी लैन जाना है जे जीवना तेरा ठाकुरा ते मरिया पुरकी लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी का वचन ताके जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखे कि जीवते को मुए को मरे नु मरिया मिलता है जीवदे नु जीवदा मिलता है तुरदे नु तुरदा मिलता है उड़दे नु उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे वो तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड के इधर उधर धागा कई तरह के चक्करां दे ना पै गुरुद्वारे आया कर गुरु द्वार गुरुद्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरुद्वारे हुए इतने गुरुद्वारे आया कर वेख इतने किसी कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई गुरबाणी दे विच लिखिया है हर बिन कछु न लागे बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिकिया बोलो आन स्वाद सब कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णो डीठा कर निर्णा करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहिगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन आ मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट होर ले एक बार आपको सतनाम श्री वाहिगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ ओनू रसना नु खत्म होके क्या ए रसना पहलो ए कहो हा ए रसना गल करो ए तू अनरस राज रही जेड़ा रस तेन गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री ओनू कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस ये रसना तू ओ वाहेगुरु की गल छड के चुगलिया बड़िया कर दी क्यों नहीं करते हैं आदो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलिया कर देना अपा कर दे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक की मौत कितना हुंदी चुगल ते निंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पानी नहीं पिउंदा ओहदी क्रिया नहीं कोई सामदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਰੂਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ।

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आप बजुर्गां ने वेखे खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शियो इस माल नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचण लई मन नूं बलद बनाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं भी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलो ना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया वट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जोड़ के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते जेहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम खेतां विच क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे केड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बगन लग पेगा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा है फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा ते कहने फलाना बंदा वचन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नूं जो इस सवासा की माला बना मगर यह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लेओ अमृत आउणा नहीं ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

आप सज्जना कदी आवाज मारियो आवाज जरूर मारियो आउंदा दे आउंदा दे आवाज जिना मारी उन्हां दे घर आउंदा दे धन गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठा कह रहा है तुहाडा चौकीदार आउंदा दे आवाज मारियो फिर एक बार रिपीट करावा आउंदा दे आवाज मारियो मारो अंदर आत्मा तो आज अब सजना हाँ देखा घर अपनड़े खड़ी तका घर अपनड़े खड़ी तका

नानक का सिख होके जे शराब पीवेगा तो भावे छनी के प्यो मना रहा तो डुबना ही डुबना है। इको तारन वाली हस्ती है वाहेगुरु नाम जहाज है किते शनि दा करोल गुरबाणी विच नहीं किते किसे देवी देवते दी पूजा तेनू गुरबाणी पढ़ के वेख देवी देवा पूजिए भाई बोलो देवी देवी देवत्या नू जे पूजिए ते क्या मांगू क्या दे क्या मांगू मैं इहना कोलों मंगूंगा ते मैनू की देण दे इस घर आने वाले सिर नवाओ जिथे दरवाजे ते लेके आज मांगे ठाकुर अपने सोई सोई इस घर नमस्कार करो जिथे खतरी ब्राह्मण छूद वैज अपदेश क्यों वरना को संज इस घर आओ। ते मैं भजन कर लगा सा गुरु तेग बहादुर महाराज नू उस वेली बंद कर दिता जिथे कहिंदे सी फूटां दी तरह तरह दी आवाजां आउंदियां गुरु दर क्यों मगर मैं एक वचन आप जी ब्रह्म ज्ञान का संतावान पुरुषों का करा वो वचन है जे डर है जे बोलो जे डर नहीं जे डर है जे डर नहीं तो डर है की अर्थ करोगे जे डर है तो डर नहीं जे रब का डर है तो कोई डर नहीं।

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नू, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आ, उस तरह श्राद्ध करवाउने आ, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जेड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर

0: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय
1: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय।
0: पहले दो चार हफ्ते तीन दी पहलों की गल हो जिधर एले तो कथा खत्म करके गए फ्री माउंड, एक बच्ची नाम सी मनजीत कौर आके कह लगी साडे घर प्रशादा छकन चलना है, घर विच विपता बड़ी पई, दुविधा बड़ी घर विच पई। दास ने बेनती की होया, कह लगी बड़े दुखी हां, एक बार आके अरदास करो। मैं क्या हुण समा नहीं, मेरी धीए फिर कदी आऊं, पर मैनूं इत्थे दस की होया तेरे घर विच, तू अमृत छकिया? मैनूं इतना लगदा वा कि तेरियां बीमारियां दा इको ही कारण है कि तू परमेश्वर तों बेमुख है, परमेश्वर तों किते मेरा गुरु कृपा करे, मेरे गुरु नानक वर्गे प्रचारक मिलन, ते कोई पुछे जी मैं बड़ा दुखी हां, ते मेरा गुरु नानक पातशाह आखे जय तन बाणी विसर जाए, तेरे दुखां दा कारण एहो ही हो कि तेनू परमेश्वर दा नाम भुल गया। उन्हें बच्ची नूं मैं बेनती की, मैं कहा धीए अमृत छकला, गुरु वाली बन जा, नितनेम करिया कर। मेरे गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने एक वचन किया, हर गाओ मंगल नित सखिए, बोलो हर गाओ। फिर एक बार प्यार नाल आप जी नूं पता लग जाए, हर गाओ मंगल एक दिन नहीं नित, रोज उठ के नितनेम करिया कर। हे सखी हे जीव आत्मा, फिर सोग दुख ना व्यापे, बाणी पढ़ के वेखो, सोग दुख तेरे घर कोई दुख कोई दलिद्र कदी आवे ही ना, तू रोज उठ के नितनेम करिया कर। कह लगी बाबा जी अमृत ते मैं छकिया सी। मैं कहा फिर परवटे ते तेरे कट्टे ने, बेदबी ते तू रोमा दी कीती है, तू कहनी मैं अमर छकिया? कहिंदी जी ये तुहाडे प्रचारक ने सब कुछ करवाया। आर सुन लो हुण, मैं जिहड़ा वचन कहण लगा आप जी नूं, मैं कहा जी प्रचारक ने करवाया? प्रचारक दा ते काम हुंदा है कि परमेश्वर दे नाल जोड़ना, टुटे हुए नूं कहना पे प्यारिया परमेश्वर दे नाल जुड़ जा। कहण लगी जी एस कनोगा पार्क गुरुद्वारे, ध्यान देना कनोगा पार्क गुरुद्वारा एले दे विच, चौंकड़े मार के सोरी तरह बैठो सुजेत हो के, कनोगा पार्क गुरुद्वारे एक कथावाच कथा कर रहा है। मैं कहा जी हुण वी? कहिंदी हां। मैं कहा जी ना की है? कहिंदी शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम, ध्यान दिओ शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम है, नखलोग दा रहण वाला है, ते ओ काला इलम जानदा है। आखो सतनाम श्री। मैं कहा जी काला इलम जानदा कोई गल नहीं, फिर काला ते काली दे राहत हुंदी, काला काला ते पाप दा वच किया, फिर कड़ी गल है तेनू जानदा, तू नितनेम करदी तेनू की हो गया? कहिंदी जी मैं उहनू भी यही बेनती कीती जिहड़ी तुहानू कीती, ते उहने कहा मैं तेरे घर आण के उहदा इलाज लवूंगा। मेरे घर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश सी, उहने सब तों ते पहलो आखिया कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे थले काला इलम लिखणा है, थले जिहड़ी चादर है ना उत्ते उन्हें पेंसिल दे नाल काला इलम लिखिया। ध्यान दिओ साडे विच कालियां भेडां किन्नियां तुरियां फिरदियां, गुरु नानक दे बाणी दे विच प्रचारकां दे नाम दे उत्ते की कुछ हो रहा है, काला इलम उन्हें थले लिखिया। फिर मैं उन्हूं आखिया कोई मंत्र जंत्र, मंदी मैं ते भुली सां, मैं ते आखिया मैनूं कोई मंत्र जंत्र दसो जिहदा मेरा भला, दुखी बंदा तां हर पासे तुरदा है। ओह कहिंदा मेरा जंत्र तां चलूगा जे तूं कृपान लाएंगे, ते गुरु नानक दी बख्शी दसवें पातशाह दी गल विचों कृपान ला, कड़ा ला, कंघा रख दे, केसां दी बेदबी कर दे, कशहरा सतगुरु दा दित्या बख्शे, पंजे ककार ला दे, ते फिर मैं अपना मंत्र पढ़ूंगा, पंजे ककार उन्हें मेरे लवा दिते ने, ते फिर भी मेरा बनिया कुछ नहीं, मैनू ते बर्बाद करके रख दिता है। ते फिर गुरु दे सिख भेजे, गुरु प्यारे उन्हूं जाके पकड़िया, पकड़ के उन्हूं पुछया क्यों भाई ये गल हुई है? कहिंदा हां हुई है, मेरे काले मंत्र दे सामने कोई टेके विखावे मैं ते पटाके पा दूं, इतना दे वचन बोलने लगा। फिर गुरु नानक पातशाह दा प्यारा एक सिख चौंकड़ा मार के बह गया सामने, कहिंदा चला हुण मंत्र तेरा, केड़ा तेरा मंत्र है, चला मेरे सामने, चला मेरे सतगुरु दे मंत्रां दे मंत्र दे अगे, अपना मंत्र जंत्रां दे जंत्र दे अगे। गल विश्वास दी आ, सानू डर आउंदा है, असी गुरु नानक दा मंत्र कमाया नहीं, असी गुरु नानक दे मंत्र उते विश्वास नहीं कीता। गुरु दे प्यारियो चौंकड़ा मार के गुरु दे सिख ने मूल मंत्र दा पाठ शुरू कीता है, दसा मिनटां बाद उठ के कहण लगा जी मेरे कोल गलती हो गई, मेरा मंत्र नहीं चलदा, नहीं चलना ए किसे मंत्र, इस मंत्र अगे कोई मंत्र नहीं चलना, मगर तुसी दृढ़ करके पहलो एदा जाप कर लो, फिर गुरु नानक पातशाह तुहाडे उते रहमता करूगा। हुण ते गुरमुख प्यारियो निकल गया इथों भज के, कोई पटाका भी नहीं पा सकिया, कुछ कर भी नहीं सकिया, क्योंकि चोर ते चोर ही है ना, चोर ते चोर ही है। पिंडा विच की कहिंदे चोर दे की नहीं हुंदे पैर, नहीं चोर किते टिकदा थोड़ा है। धन गुरु नानक दी बाणी दा कोई उपदेश हुंदा, वड्डे तो वड्डे चैलेंज करन वाले नूं कहिंदा आ पई, ते गवाही देंदा कि ऐ वेख आ शब्द मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दे ऐस पन्ने ते लिखिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे, मैं कह रहा सा जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर उलामा मिले, ताही उलामा मिलता, जे गुरु नानक दा सिख कितों मंत्र जंतर तंत्र कराउंदा है, ते आपां ते सारे कम्मां लई की करना है।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी जे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगण यारी कंत न पावे बोलो अवगण यारी सारे बोलो जरा अवगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणा दियां मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वा मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखने वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुठा मूह थले नू लत्ता तां नू ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छड़ाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छड़ाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छड़ाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छड़ा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छड़ा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छड़ा के बाहर लिया विच्चों गर्भे निकल आया। बोलो विच्चों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विच्चों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
माया जितना अग्न अग दी अंदर च तरले पाउंदा सा है मैं सड़ जूंगा आ बार माया दी अग विच भी बंदिया इथे भी तरले पाओ उस वाहेगुरु नूं इथे भी तेनू जे अंदरों दी अग विच उहने छडाया वा ना ते इस अग दे विचों भी तेरी सहायता उहने ही करनी है इथे क्यों भुल गया है ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ

0: वेखो किन्ने प्यारे चक्कर खंड निवात गोड़ अगे माखियो माझा दुध ए सारिया चीजा आपा किसे ना किसे समय चख के वेखिया। शक्कर खा के वेखी, खंड खा के वेखी, निवात दा मतलब मिश्री खा के वेखी, माखियो दा शहद खा के वेखिया, माझा दुध पी के वेखिया। मेरे सतगुरु ने सारिया चीजा का ना लैके जिन्हां ने चखिया उन्हां नूं इस गल का पता लगा। आखो सतनाम श्री। ए गल उन्हां ने आखे अलौती का जैसे पया बरेडा, बोलो अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया, ते फिर जिन पिया तिन जानिया। ए ते जिन्ने पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई है। इथे भी बाबे फरीद ने जदों उस परम पिता परमेश्वर दी बंदगी दा रस चख लिया, ओदी मिठास वेख ली, ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध ए सारियां चीजां हे वाहिगुरु बड़ियां मिठियां ने खा के वेखियां ने। हांजी अगे जी
1: सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद।
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहिंदे ने सबे वस्तु मिठियां। इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आपा कहने। ए ते गल ठीक है, ए ते गल पर अगे ना पर आ भी ते गल है, आ गल जेड़ी है होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने इहदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओह किन्ना मिठा है, इहदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नूं किसे गुरसिख प्यारे ने पुछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जदों मुंह दे विचों बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना क मिठा है। आखो सतनाम श्री। जरा गज के आखो समा हो चलिया है मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नूं भेजे। आखो सतनाम श्री। जन्मां दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे। आखो सतनाम श्री। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी क मिठास आ। ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी, शक्कर दी बोरी मिठी। ते फिर छेती नाल कहिंदे नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा, मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना क मिठी है। उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण, लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए। ते जिन्नी ओदी मिठास आ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਏ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁਣ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਦ। ਹਾਂਜੀ।

0: साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनता दे योग जे जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन बचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
1: गुरु अगे कृपा करो बेनती करो हे मेरे सतगुरु ऐसा रंग चाढ़ दे एक बार जरा रंग कह दो काया रंगन जे थिए प्यारे पाइए नाओ रंगन वाला जे रंगे साहेब रंगन वाला जे ऐसा रंग कहते एहो जहा रंग चढ़ दे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों फरखशीर ने फड़िया ते गुरु दे सिखो कहते अपने वड्डे वडेरिया का इतिहास पढ़ियो अपने वड्डे वडेरिया का इतिहास पढ़ के उत्ते गर्व करिया करो माण करिया करो उहदे उत्ते सत सौ साथी दे नाल जदों फड़ के खड़िया ते रोज वारी सिर गुरु दे सिखां दे सिर कलम कीते जांदे सी दिल्ली चांदनी चौंक ते आखिर जदों सूरमे की वारी आई पिंजरे दे विचों कढ़िया ते इतना बहालिया सी जंजीर मारे सी ते चार चफेरे पहरा सी ते आखण लगे हुण दस गुरु दे सिखा एक पासे मौत ही एक पासे गुरु ही दस की चुनना ही ध्यान दियो सिखी जदों परखी गई पता नहीं किस तरह की हुण आर्टिफिशियल जी सिखी बन गई है निकिया निकिया गल्लां ते शराब की गलासी ते सिखी डिग पैंदी नाई की दुकान ते सिखी डिग पैंदी दो चार पांच रुपये मिल जाण कौडियां दे पास सिखी विक जांदी आ अज का सिख सिख कमाउंदा कितना है ए मन विचों श्रद्धा टुट क्यों नहीं गई है दो गल्लां रख दित्तियां एक पासे सजना आ तत्ता कीता जमूरी ते तेनू असी मौत भी यह नहीं कि गोली मार के मार देना है इस जमूर दे नाल तत्ते कीते नाल तेरा बोटियां नाल मास तोड़ना है ध्यान दियो अज मैं बच्चे नू दस रहा सा ते कहिंदे इतना उन्हू शहीद किया मैं कहा गुरमुखा कि पढ़ के वेखो ओहदा इतिहास इतना गुरु का सिख बह गया ते जलाद लैके जमूर इतना इतना आ वेखो तोड़ तोड़ के तत्ते जमूरां दे नाल बोटियां मास दियां तोड़ियां ते हर बोटी टुटन दे नाल कहिंदा सी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जे को किसे नू नशा चढ़दा है ना किसे दे प्यार विच आण के ओहदियां अखां विच नेत्रां विच लाली चढ़दी जांदी सी ते बोटियां तोड़ तोड़ के जदों खूनो खून कर दिता ते फिर भी गुरु का सिख ना डोलिया ते फिर जलाद कहण लगा बाबा बंदा सिंह साडे कोल इक होर तरीका हैगा है तेनू मौत दे खौफ तों भी ज्यादा डराउण वाला ते गुरु दे सिख ने नेत्रां विच खून भरिया सी आख्या ओ केड़ा ते फिर चार साल का पुत लिया सामने आखो सतनाम श्री इतिहास के पन्ने पढ़ो बाबा बंदा सिंह बहादुर का चार साल का पुत लिया आखन लगे ए पुत केदा है कह लगा सतगुरु का बख्शिया दास का पुत है कह लगे फिर तेनू ए ते तेरी कमजोरी हो ए ते तेरी वीकनेस होगी एदे वल वेख के तू सिखी छड़ेगा कह लगा नहीं वो सजना एदे वल वेख के ते रंग होर चढ़ गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਇਹ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੰਗ ਹੀ ਐਸਾ ਚਾੜਿਆ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਕੇ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪਾਤਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਤਰਾ ਤਿੱਖਾ ਛੁਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਮਿਲਦੇ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਵੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਛੁਰਾ ਤੇ ਚਾਰ

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जिन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह की बाणी सरवण की, नितनेम साहब सरवण किया है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश हो के आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणज।

0: रात मुकदी
1: चली रैण,
0: सब मुकदी चली रैण, सब मुकदी चली रैण, सब मुकदी
1: चली रैण, सब मुकदी चली रैण।
0: सतगुरु नु पुछो, ए गरीब नवाज, ए दुनिया दे स्टोर विच असी की खरीदन आए हां, असी की लेना आए हां, साडे आउण दा इत्थे मकसद है की? स्टोर लेना सी, केवल साडे जीवन दा इना ही मनोरथ सी कि असी इसे आण के अमरीका दा वीजा लग जांदा, स्टोर लै लैंदे, कारोबार खोल लैंदे, केवल साडा एहो ही मकसद आ? मेरे साहब कहिंदे नहीं, उह भोलिया, इह ते दुनिया दी किरत रोजगार मेरे मालक ने चलाया है, तेरा कोई सौदा हो रहा जिहड़ा तू लैण आया है? मेरे साहबां, मैं ते दुनिया दे खेल तमाशे च भुल गया, मैं की लैणा है? चेता कराओ। ते साहब चेता कराउंदे

0: सारे आखो सारे ही
1: तेरी परिया गोविंद मिलन की तेरी परिया।
0: हुण आपां व्यापार करन आया, एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरिया मोतिया जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा वचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसीं व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उहनूं लोकी कहिंदे नहीं इहनूं व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चलिए। तां वा गुरमुख प्यारिओ के कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ, लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया दी रास पा के दित्ती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दित्ता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर दी बंदगी करके लाहा खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईआं, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।